महाराजने तिथि पुत्रं तिथि कुम्मं तिथि लाभो तिथियो नित्यं रमे महाराजो रता रमणीयासहा ओ नि तत्पदा ओ नमाय प्रभो नमः।